Mitchie. It's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई बजा

0: मिर्ची इट्स हॉट,
1: मिर्ची इट्स हॉट।

0: लाइफ में ना कभी कभी हम कुछ ऐसे काम करते हैं सुपर ग्लोरियस, सुपर क्रेजी कि हम हर एक इंसान को बता नहीं सकते उसके बारे में. लेकिन अगर आपने कभी ऐसा काम किया है ना, तो नाउ इज द टाइम टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि मैं तो आपको रोशिफाई करने के मूड में हूँ. टाइम हो गया फॉर द
1: सीक्रेट बॉक्स.
0: हाँ, एंड हिट मी अप, यू जस्ट हैव टू सेंड मी योर नंबर ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. और वंस यू सेंड मी योर नंबर, आई विल कॉल यू. इट्स एज सिंपल एज दैट. मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
2: हेलो,
0: हाउ आर यू? नर्वस साउंड कर रहे हो आप बहुत.
2: ऐसे ही कुछ हुआ मेरे साथ, इसीलिए.
0: क्या बात कर रहे हो, क्या किया आपने जिंदगी में, बताओ तो.
2: सो हुआ ये कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे भूल गया.
0: फिर?
2: यस.
0: फिर?
2: या सो अराउंड 3-4 o'clock जब मैंने देखा सब उसको विश कर रहे हैं, तब मुझे याद आया कि उसका बर्थडे था. नो, तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको मनाया कि मैं एक पार्टी प्लान कर रहा था, इसलिए मैंने विश नहीं करा था. तो या ये हुआ था.
0: वो मान गई कि आप उसको सरप्राइज पार्टी दे रहे थे, इसलिए आपने विश नहीं किया था.
2: हाँ,
0: क्या बात.
2: मैंने फिर वो प्लान कर ली.
0: तो वो खुश हो गई वो आपकी सरप्राइज पार्टी पे. आप क्या बंदे हो यार, कमाल. कितने टाइम से डेट कर रहे हो आप अपनी गर्लफ्रेंड को?
2: It's been 1.5 years.
0: तो बेसिकली पिछले साल आपको याद था या भूल गए थे पिछले साल?
2: नहीं, पिछले साल याद था.
0: और फिर एक साल हो गया, देन यू वर लाइक छठ पर है, क्या फर्क पड़ता है. You are so cute. You are sounding so nervous. You are like, रोशी मैंने ये कर दिया, किसी को बताना नहीं. मैं आपको रोशिफाई कर देती हूँ, ठीक है? एक गहरी सी सांस लो.
3: You've been रोशिफाइड.
0: अगली बार ना एक काम करेंगे, ठीक है? ऑफलाइन आपने जैसे इंस्टाग्राम पर मुझे अपना नंबर भेजा है ना, आप मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का डेट ऑफ बर्थ भेज देना. मैं अगले साल आपको 2 दिन पहले रिमाइंड कर दूंगी. हाउ डज दैट साउंड?
2: ओह, दैट विल बी ग्रेट.
0: है ना?
2: या
0: ऑल द बेस्ट यू माय डार्लिंग. यू साउंड सो नर्वस. एक ग्लास पानी पी लो आप एक तो साइड में. और अगर आप भी जिंदगी में बहुत ही नर्वस हो, बिकॉज यू आर अ वेरी शाई पर्सन बाय नेचर, इट डज नॉट मैटर. मैं आपकी मतलब गले पड़ी हुई BFF हूँ. सो हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एंड हैव आई एवर टोल्ड यू हाउ क्यूट आई थिंक यू आर? एनीवे, सो डू व्हाट यू हैव टू डू, बट कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची. It's hot.

0: रोशी बाबा की जय।
1: Calm down, my bhagjano. I have some great piece of relationship advice for you today. और वो ये है कि अगर आपका ex आपसे कहता है that they want you back, वापस जाने से पहले बस चार चीजें consider कर लेना. Number one, was that person drunk when they were asking you to come back? Number two, try and figure out कि क्या वो आपको miss कर रहे हैं या आपके साथ spend किए वक्त को slash the great action को. Number three, figure out अगर आप उन्हें miss कर रहे हो. Number four, try and figure out कि आपने relationship में breakup किया क्यों था in the first place और क्या when you go back वो चीज promise फिर से नहीं होगी. If all those four things are under your consideration, then I have a feeling कि आप एक mistake फिर से तो नहीं करने वाले हो. और अगर ऐसा कर चुके हो and you want to talk about it, why don't you hit me up Insta पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की spelling है ROCHIE. And while you find me on the gram या Facebook, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। कई बार तो मोहब्बत के उस मुकाम तक पहुंचे हम अपनी जिंदगी में, वेयर वी आर लाइक कि यार इससे अच्छा तो मर जाना था, बट हमारा मतलब इतना बुरा हाल किया है एक इंसान ने हमारी जिंदगी में, एकदम जोकर बना के छोड़ दिया। और अगर आपके साथ जिंदगी में ऐसा हुआ है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू आर नॉट दी ओनली वन। मेरा तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है कितने सारे रिलेशनशिप्स में, लेकिन अगर आप भी कभी मुर्गे बने हो, देन हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB, एंड लेट्स टॉक अबाउट वो रिलेशनशिप जिसने आपको निहायत ही स्टूपिड फील कराकर छोड़ा। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर अभी अंकित है। हाय अंकित।
1: हाय रोशी, हाउ आर यू?
0: मैं तो ठीक हूँ यार, मतलब प्यार, एक्चुअली वी हैव वन थिंग इन कॉमन।
1: एंड व्हाट इज इट?
0: और वो ये है कि प्यार में मैं बड़ी गधी थी और प्यार में तू बड़ा गधा था। तूने मेरे को स्टोरी तो बताई थी इंस्टाग्राम पे।
1: हाँ, कटा तो था लेकिन उससे सीखने को भी काफी मिला।
0: अच्छा, तो जरा बताना कि आपका ये जो टॉर्चर का पीरियड था कितना लंबा था और एग्जैक्टली स्टोरी क्या है।
1: तो इट वाज फॉर अराउंड 6-6.5 years, काफी लंबा टाइम था, इसलिए धीरे धीरे कटा, हलाल हुआ आराम आराम से। मतलब मेरी बंदी थी वो 6 साल से मैं उसके साथ रिलेशनशिप में था। शी वॉज मोर क्वालिफाइड, मोर इंटेलेक्चुअल एज कम्पेयर टू मी। अच्छा, उसका एक हमेशा से ड्रीम था कि आई वॉन्ट टू गो एंड सेटल इन ऑस्ट्रेलिया। उसने मुझसे बोला कि कैन यू, अच्छा वो पढ़ाई में वैसे तो तेज थी बट फैमिली बैकग्राउंड से बहुत साउंड नहीं थी। सो शी यूज टू आस्क मी कि क्या मैं उसकी फाइनेंशियली थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ, क्या मैं उसका वर्क वीजा लगवाने में हेल्प कर सकता हूँ। तो मैं पढ़ाई में तो तेज नहीं था लेकिन मैं इन सब चीजों में जरूर तेज था। सो दैट इज हाउ आई यूज टू हेल्प हर। करते करते टाइम निकलता गया, सम हाउ आई मैनेज टू गेट दैट वर्क वीजा फॉर हर। अच्छा, और हमारी म्यूचुअल बात ये, डिस्कशन ये हुआ था कि वो ऑस्ट्रेलिया जाके सेटल हो जाएगी, देन शी कॉल मी टू देयर to that place and get settled over there.
0: अच्छा, because अगर उसे वीजा मिल जाएगा then आपकी उससे शादी हो जाएगी, तो उस वर्च्यू से आपको पार्टनर वीजा मिल जाएगा।
1: मेरे मन में तो ऐसा ही था कि PR मिल जाता, बट शायद उसके मन में ऐसा नहीं था।
0: क्यों?
1: वो ऑस्ट्रेलिया चली गई, वो वहाँ सेटल हो गई, एंड व्हेन आई आस्क्ड हर कि यार अब तुम तो वहाँ वेल सेटल्ड हो, यू आर अर्निंग गुड, सो कैन आई ऑल्सो कम ओवर देयर, तो उसने काफी हफ्ते हुए थोड़ा सा स्माइल के साथ बोला कि यार अंकित अब वो कनेक्शन नहीं रहा यार।
0: व्हाट?
1: यस, जैसे आपने वर्ड बोला इसी तरीके से मेरे मुंह से भी निकला था।
0: ऐसे ही मतलब उससे बोला कि अब कनेक्शन नहीं रहा, तो तूने मेरे लिए इतना सारा मेहनत किया है, अब तू रहे इंडिया में और मैं बसूंगी ऑस्ट्रेलिया में तेरे पैसों पे।
1: वो मेहनत, वो पैसे, वो साल, सारी

0: बर्बाद हो गया एक तरह से, लेकिन ठीक है साथ में रही कुछ सीख.
1: Dude, this is crazy. मतलब मैंने तो अपने बॉयफ्रेंड्स के कपड़े धोए हैं, उनके रेंट दिए हैं, उनके मम्मी पापा के पैसे भिजवाए हैं घर कि भाई बेचारा कमा नहीं रहा इस महीने मैं भेज देती हूँ. बट आपने तो 6 साल ये जो अब पता नहीं कितने कर्मा बोनस पॉइंट्स कमाए हैं आपने. अंकित वैसे तो मैं एक कॉल के ड्यूरिंग अनलेस इट्स अ कन्फेशन कॉल ये नहीं करती हूँ, बट दिस वन इज फॉर यू.
2: यू've been roshified.
1: तू तो मुझसे भी गया गुजरा है यार. It was amazing talking to you, यार.
0: Same here, Roshi.
1: Such a pleasure, अंकित. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही बेचारे अंकित की तरह और बेचारी मेरी तरह आपके रिलेशनशिप्स में आपने काम ज्यादा किया प्यार कम मिला है, why don't you hit me up? That's what we're discussing today. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So do whatever you have to do, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: ज्यादातर फिल्में फ्राइडे को फेल नहीं होती, मंडे को होती हैं। फ्राइडे तो मार्केटिंग का दिन होता है, देन कम सैटरडे जो होता है क्यूरियोसिटी का दिन, लेकिन मंडे सच बोलता है। तब पता चलता है ऑडियंस से टिकट्स खरीदने आई थी या दिल देकर गई थी। और आज के जमाने में जहाँ हर फ्राइडे कोई ना कोई फिल्म, कोई ना कोई गाना और कोई ना कोई नेक्स्ट बिग थिंग लॉन्च होता है, वहाँ मंडे से बड़ा क्रिटिक कोई नहीं होता। इसलिए अब सिर्फ ओपनिंग कलेक्शन से कहानियां नहीं लिखी जाती, वर्ड ऑफ माउथ लिखता है, रिपीट ऑडियंस लिखती है, और कभी कभी एक गाना या एक फिल्म अपनी असली जानी शुरू ही तब करती है जब उसका प्रमोशन खत्म हो जाता है। इस हफ्ते का मिर्ची टॉप 20 भी ऐसी ही कुछ कहानियों से भरा हुआ है। हाय, माय नेम इज सुरेंद्र सुंदरम एंड लेट्स गेट दिस शो ऑन द रोड। और नंबर 20 इस हफ्ते भूत बंगला का ये गाना तू ही दिसता।
0: नंबर 20

ओ बाय द वे, अरिजीत सिंह का एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए इंतजार कर रहा है। लेकिन अभी एक ऐसा गाना जिसकी कहानी ने साबित किया कि जब ऑडियंस किसी फिल्म को अपना लेती है ना, तो उसे कोई मार्केटिंग कैंपेन हरा नहीं सकता। नंबर 19 पर दिस इज मस्कारा बाय AR रहमान एंड इशाक कामिल। फिल्म का नाम तो आप जानते हैं, मैं वापस आऊंगा। नंबर 19।

वैसे धुरंधर अगले साल नेशनल अवार्ड्स में कितनी बड़ी प्रेजेंस होने वाली है उसका अंदाजा अभी से लगाया जा सकता है। लेकिन इस हफ्ते नेशनल अवार्ड्स ने एक और फिल्म को गले लगा लिया, आर्टिकल 370, बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस, यामी गौतम। और पता है मुझे इस जीत में सबसे खूबसूरत बात क्या लगी? बॉलीवुड यामी गौतम को हीरोइन बनाना चाहता था, यामी गौतम ने एक्टर बनना पसंद किया। जब सब ग्लैमरस फिल्म्स के पीछे भाग रहे थे, यामी ने कहानियां चुनी। अ थर्सडे, लॉस्ट, चोर निकल के भागा, द ब्रिलियंट हक एंड आर्टिकल 370, एक के बाद एक स्टेलर परफॉर्मेंस। एंड नन ऑफ द फिल्म्स हैड अ जौहर, अ चोपड़ा, अ भंसाली और इम्तियाज अली अटैच टू इट। और आज नेशनल अवार्ड ने सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं दी, एक करियर को सर्टिफाई कर दिया। स्क्रीन पर सरनेम नहीं दिखता, सिर्फ परफॉर्मेंस दिखती है। नाउ यामी का करियर आसान रास्तों से नहीं गुजरा, शी हैड टू डू व्हाट एवरीवन डज। लेकिन उनकी पहली फिल्म थी विद अ मास्टर ऑफ हिज क्राफ्ट, सुजीत सरकार। फिल्म का नाम विकी डोनर। लोग इस फिल्म को आयुष्मान खुराना के लिए जानते हैं, बट इस फिल्म की असली स्थिरता यामी थी। इस फिल्म का वो गाना इसने हमें पहली बार बताया था कि एक नई एक्ट्रेस आ चुकी है। पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम विकी डोनर, दिस इज पानी दा रंग।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: Number 10.

0: जिस दिन धुरंधर 2 रिलीज हुई उसी दिन एक और फिल्म ने आना था, पर वो फैसला बदल दिया गया। कभी कभी एक फिल्म का इंतजार नहीं होता, एक इंसान का इंतजार होता है, और पैन इंडिया सुपरस्टार यश उन्हीं स्टार्स में से एक है। KGF के बाद 4 साल हो गए स्क्रीन पर उन्हें देखे हुए। बीच में टॉक्सिक की रिलीज डेट कितनी बार बदली, कभी शूटिंग का रीजन, कभी प्रोडक्शन का रीजन, कभी दुनिया की सिचुएशन का रीजन, लेकिन ऑनेस्टली ऑडियंस को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए बस एक बात मैटर करती है, दैट यश इज कमिंग बैक, और सिर्फ एक फिल्म में नहीं, 2 फिल्मों में। ऑफ कोर्स रामायण में वो रावण का रोल कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मिलेगी टॉक्सिक। और जब इसका टीजर आया था सबके दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर टॉक्सिक है क्या, व्हाट इज इट अबाउट? तो चलो इसका जवाब खुद यश से सुन लेते हैं।
1: इन इंडिया वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, बट स्टेट ऑफ इंडिया वाज स्टिल अंडर पोर्चुगीज कंट्रोल टिल 1961. सो द स्टोरी इज सेट इन दैट एरा वेयर इट वाज टाइम वेयर लॉट ऑफ पोर्चुगीज वेयर, इंडियंस वर देयर, सो इन बिटवीन दैट देयर वाज ट्रेड, लॉट ऑफ पोर्ट बिजनेस। सो इन दैट एरा इफ देयर इज स्ट्रगल फॉर पावर, ग्रीड, and then gangster, you know, all the gangster things can happen with lots of Tommy guns and action. With that, there's a lot of complex human emotions where there's a deep love story in it, there's a brother-sister sentiment, and also it's a father and son revenge saga. So it's a very interesting package.
0: So setting purane daur ki hai, jisme gangsters hain, ek power struggle hai, pyar bhi hai, aur saath mein revenge bhi. Yani ek proper, larger than life, cinematic masala universe. लेकिन टीजर के बाद जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट किया था वो है इस फिल्म का म्यूजिक, क्योंकि विशाल मिश्रा और राजशेखर की जोड़ी जब भी साथ आई है खाली हाथ नहीं गई। एनिमल में पहले भी मैं, एंड देन सयारा में तुम हो तो, और अब टॉक्सिक में तबाही। नाम भी वही, एनर्जी भी वही, और यश के स्क्रीन प्रेजेंस के साथ गाना बिल्कुल उसी स्केल पर सोचता है। बस एक वार्निंग दे रहा हूं, अगर इसका वीडियो देखने वाले हो तो बच्चों को थोड़ा दूर ही रखिएगा, इट्स नॉट सेफ फॉर देयर व्यूइंग। मिर्ची टॉप 20 पर डेब्यूइंग इन द टॉप 10, और नंबर 9 ये है टॉक्सिक का तबाही। नंबर 9।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 8।

0: धमाल इज अ सर्टिफाइड ब्लॉकबस्टर और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत लोग इसे एंजॉय भी करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन वेरी रिसेंटली मुझे एक अजीब सी रियलाइजेशन हुई। बचपन में मुझे कभी समझ ही नहीं आता था कि मम्मी पापा हर बार वही पुराने गाने आखिर क्यों सुनते थे। इतने नए गाने आ रहे थे फिर भी उन्हें सुनना था, मोहम्मद रफी को, किशोर कुमार को, लता जी को, आशा जी को, और तब लगता था शायद वो नए म्यूजिक को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। लेकिन आज समझ आया, कुछ गाने पुराने नहीं होते, हम उनकी उम्र के हो जाते हैं। YouTube पर वीडियो सर्व करते करते अचानक एक वीडियो पे आके मैं रुक गया। किसी शादी में एक वायलिनिस्ट मोहब्बते की धुन बजा रही थी, और जैसे ही ये थीम बजी मैं फिल्म को याद नहीं कर रहा था, मैं अपनी जिंदगी याद कर रहा था। यस, आज देखते हैं तो मोहब्बतें एक बड़ी फ्लॉट सी फिल्म लगती है। प्रीमाइस ओवर द टॉप लगता है, कुछ सीन्स जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक लगते हैं, लेकिन फिर देयर इज शाहरुख खान, हाथ में वायलिन, कंधे पर स्वेटर और ये ट्यून, और बस सारी क्रिटिसिज्म चुप हो जाती है। यही तो कमाल है कुछ कॉम्पोजिशंस का, वो आपको फिल्म याद नहीं दिलाती, वो आपको आप याद दिला देती है। इस ट्यून का कमाल देखिए, लगभग 25 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी जब ये ट्यून बजती है, वी जस्ट आर ट्रांसपोर्टेड टू दैट टाइम, द शाहरुख खान ईरा, अमिताभ बच्चन एज नारायण शंकर, वो तीन लव स्टोरीज और गुरुकुल की ये कहानी, यू जस्ट नो। लेकिन जिस ईरा में अब हम हैं और जिनके गाने हम सुन रहे हैं, अगर आंख बंद करो तो याद नहीं आता कि फिल्म में क्या हुआ था। टेक द नेक्स्ट सॉन्ग ऑन द काउंटडाउन फॉर एग्जांपल, चुनरी चुनरी, आपको हमेशा सलमान खान और सुष्मिता सेन ही याद आएंगे, नया वर्जन उतना याद नहीं आएगा। और अगर एक और धुन है जो हर बार वक्त को थोड़ी देर के लिए रोक देती है, तो वो है ये कॉम्पोजिशन, हिंदी फिल्म्स के इतिहास के सबसे लेजेंडरी गानों में से एक, एन अनपैरेलल्ड परफेक्ट कॉम्पोजिशन बाय शंकर एहसान लॉय, लिखा है इस देश के सबसे ग्रेटेस्ट पोएट्स में से एक जावेद साहब ने, एंड इट हैज बीन संग बाय द फ्लॉलेस, द परफेक्ट सोनू निगम। मेरा रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक,
1: टॉप 20 रिवाइंड।

एक गाना जब बहुत बड़ा हिट बन जाता है, हम उसे एक्टर के नाम से याद रखते हैं, कभी सिंगर के, कभी फिल्म के, लेकिन उस गाने के पीछे कितने लोग अपनी जिंदगी लगा देते हैं उसकी बात बहुत कम होती है। पिछले कुछ दिनों से सैयारा फिर से डिस्कशन में है, बिकॉज द सॉन्ग इज आउट ऑफ द काउंटडाउन आफ्टर ऑलमोस्ट 60 वीक्स। लेकिन इस बार वो अपनी कामयाबी की वजह से डिस्कशन में नहीं है, रॉयल्टीज को लेकर हुई एक पब्लिक कॉन्वर्सेशन की वजह से। एक तरफ है कंपोजर तनिष्क बागची, जिनका कहना है कि उन्हें टाइटल ट्रैक के रॉयल्टीज नहीं मिले। दूसरी तरफ यशराज फिल्म्स ने क्लैरिफाई किया है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सारी पेमेंट्स और रॉयल्टी ऑब्लिगेशंस पूरी की जा चुकी है। देखो सच क्या है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा मिलेगा, हमें नहीं पता। एंड तनिष्क बागची ने वो पोस्ट जो है वो डिलीट भी कर दिया है। लेकिन

एक बात मैं जरूर जानता हूँ, जब कोई गाना इतना बड़ा बन जाता है ना जैसे सैयारा वाला, तो वो सिर्फ एक सिंगर का नहीं रहता, ना सिर्फ कंपोजर का रहता है, ना वो फिल्म का रहता है, वो हम सबका हो जाता है। बस उम्मीद इतनी सी होती है कि जिस गाने को इतना प्यार मिला उसे बनाने वालों को भी उतना ही रिस्पेक्ट मिले। वैसे हर जनरेशन का एक साउंड ट्रैक जरूर होता है, पिछले साल वो साउंड ट्रैक था सैयारा, लेकिन एक रोमांटिक गाना और भी था विच फॉर मी वॉज एट पार विद सैयारा, जिसमें अरिजीत का फिर एक मास्टर क्लास सुनाई देता है, कंपोज बाय द सेंसेशन नोन एज शाश्वत सचदेव, वंस अगेन ऑन नंबर वन, दिस इज गहरा हुआ नंबर वन।

0: इस गाने की गहराई में मैं कितने महीनों से डूबा हुआ हूँ एंड फिर भी आई डोंट वांट टू कम आउट ऑफ इट बट आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस बिकॉज मेरा टाइम अप हो चुका है बट रिमेम्बर आप और मैं यहाँ इसलिए मिलते हैं बिकॉज वी लव आवर मूवीज सो टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट ऑन अनदर एपिसोड ऑफ द मिर्ची टॉक 20 दिस इज सुरेन ओवर एंड आउट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: तारीखें भूल जाती हैं, नाम भूल जाते हैं, पर कुछ गाने हमें एक पूरा जमाना याद दिला देते हैं। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। ये वो शो है जहां हफ्ते के हॉटेस्ट टॉप 10 इंडिपेंडेंट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है, सम स्पेशल शाउट आउट्स, ऑल दैट एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10, जसलीन रॉयल बादशाह का गाना इनाम। पिछले हफ्ते से दो पोजिशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक और नंबर 10। उसके बाद नई नवेली एंट्री, ज़ारा खान स्केल्स का गाना, गाने का नाम है मूव बॉडी। इस गाने ने डेब्यू किया है ऑन गाना नंबर 9 एंड इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 9।

0: ज़ारा खान स्केल्स का गाना, गाने का नाम है मूव बॉडी, नई नवेली एंट्री, डेब्यू किया है सीधा ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। गाने आर्ट एक तरह से एक टिकट होते हैं टू अ मेमोरी, एंड सम ऑफ द बेस्ट मेमोरीज ऑफ माय लाइफ आर ऑफ दोस कॉलेज डेज। ये बात कभी सोची है कि जब हम उस उम्र में थे जब कुछ ज्यादा पता नहीं था तो हम सबसे बहादुर थे। उस उम्र में जो भी बनाया, जो भी सपने देखे, जो भी लिखा, आधा अधूरा या पूरा, उसमें एक चीज थी जो अब बाद में हम कहीं खो देते हैं, एंड दैट इज होप। वो हमारी जिंदगी का सबसे रॉ फेज होता है, जब हम ओवर कैलकुलेटिव नहीं होते कि इससे क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, करियर बनेगा या नहीं, बस दिल में कुछ था और लिख दिया। एंड दैट्स व्हाई इन द म्यूजिक स्पेस एज वेल, अगर आप देखेंगे सम ऑफ द बिगेस्ट पॉप स्टार्स जो हमने देखे हैं इन द लास्ट 4-5 ईयर्स हैव बीन दीज यंग गन्स। बिली आइलिश द ग्लोबल आइकॉन का एग्जाम्पल ले लो, उनका गाना ओशन आइज तब फटा जब वो सिर्फ 18 साल की थी। हमारी अपनी जीनी जो देहरादून से है अब मुंबई में गाने बनाती है, उनके गाने लाइक सुकून, आशियाना, वो जनता के साथ कनेक्ट इसलिए ज्यादा करे क्योंकि उसकी राइटिंग बहुत ऑनेस्ट थी। तो ये ऑनेस्टी और ये रॉनेस कोई टेक्निक नहीं है या कोई हिम्मत नहीं है, ये आई थिंक सोचने की हिम्मत है जो कहीं ना कहीं आई रियली फील वो उम्र अलाउ करती है। पर असली सवाल तो ये है कि जब हम कभी ये हिम्मत खो देते हैं तो क्या वो वापस मिल सकती है, क्या हम जीरो पे आके वापस शुरू कर सकते हैं। एक आर्टिस्ट है लखनऊ से जिनका एक गाना बहुत पॉपुलर हो रहा है, गाने का नाम है तारे, आर्टिस्ट का नाम है फरक, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट सॉन्ग्स जो जनता के दिल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इसमें एक लाइन है जो आपको रोक देगी, वो कहता है परिंदा पिंजरे में इतने दिन रहा कि अब आसमान से ही डर लगता है। देयर सो मच टू टॉक अबाउट दिस सॉन्ग बट आई विल लेट यू सिट विद इट। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। आर्टिस्ट का नाम है फरक, गाने का नाम है तारे। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10 एज आवर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट ऑफ द वीक। एंजॉय।

लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: There's something so honest, so soothing about this song. गाने का नाम है तारे, आर्टिस्ट का नाम है फरक. नाम याद रख लीजिए, क्योंकि गाना तो डेफिनेटली याद हो गया आपको. बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की तरफ बढ़ते हैं. संजू राठौर की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज. गाने का नाम है बैंगल्स. पिछले हफ्ते से एक पोजिशन ऊपर जम करके बैंगल्स इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 8.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट
0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
2: नंबर 7
3: हाउ चुप कर लंग जावे कोल दी तू संग जावे को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे लोकी

0: कैश किंग की आवाज में एक गाने का नाम है किनिया सोनी। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने हर्ष नुसी की आवाज में उन्हीं के लिरिक्स सुनी की कॉम्पोजिशन वाला गाना सुना, गाने का नाम साडी सुन ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो @rjkanika ऑन इंस्टाग्राम। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। म्यूजिक आर्ट है, आर्ट इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। एंड एक म्यूजिक का फॉर्म जो सबसे ट्रू है इन द वे इट एक्सप्रेसेस इज हिप हॉप। ये जॉनरा ना किसी स्टूडियो में पैदा नहीं हुआ था, ये वहां से आया है जहाँ लोगों को माइक नहीं दिया जाता था लेकिन दिल में कहानियां बहुत हैं। जहाँ तकलीफ कोई सुन नहीं रहा है तो एक्सप्रेशन म्यूजिक बन गया। हर कंट्री का, सिटी का, एरिया का रैप का फॉर्म अलग होता है, कॉज वहां से जुड़ी कहानियां अलग होती है। दिल्ली हिप हॉप अलग है, मुंबई हिप हॉप अलग है, केरला का हिप हॉप बहुत अलग है। पर व्हाट्स कॉमन अमंगस्ट ऑल दीज फॉर्म्स इज द रियलिटी एंड एक्सप्रेशन ऑफ द आर्टिस्ट। पर कहीं ना कहीं इस पूरे मूवमेंट के पोस्टर बॉय रहे हैं डिवाइन, जिनका असली नाम विवियन फर्नांडिस है। बहुत सारे लोगों को लगता है दैट गली बॉय जो मूवी बनी थी वो उनकी लाइफ पे बेस्ड थी। दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू। उन्होंने उस मूवी में कंसल्ट किया था, बहुत हेल्प करी थी, उनका म्यूजिक है बट वो उनके बारे में नहीं है। बट देयर आर सॉन्ग्स लाइक मेरी गली में जो पूरे देश ने पहली बार सुना ऑन अ बिगर लेवल, कॉज वो गली बॉय जैसी मूवी में आया। पर उसी साउंड ट्रैक में एक गाना था कॉल्ड आजादी। इस गाने के प्रोड्यूसर है डब शर्मा, जो चंडीगढ़ का एक लड़का है जिन्होंने अपने कमरे में बैठकर ये कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, किसी फिल्म के लिए नहीं, किसी ऑडियंस के लिए नहीं, बस अपने लिए। एंड द सॉन्ग समहाउ मेड इट टू अंकुर तिवारी, जो उस वक्त गली बॉय के म्यूजिक को सुपरवाइज कर रहे थे। एक मेल गया, एक मीटिंग हुई, एंड दैट सॉन्ग मेड इट टू द बिगेस्ट मूवी अबाउट एक्चुअल हिप हॉप। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज हैज कम आउट ऑफ द कल्चर। डब शर्मा डिवाइन का गाना, गाने का नाम है आजादी। हर बार सुन के गूज़बम्स आ जाते हैं। गाना इंडी टॉप 10 पर, बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: को कैसे लेंगे सांस क्यों? एक तरफा तराजू तेरी हंसी मेरे आंसू घुट घुट की क्यों सांस लूं? उसे देगा क्या हिसाब
1: तू? तेरा पिंजरा मजाल ने खाना परिंदे आने उड़ जाना तेरा पिंजरा तेरा मुक जाना सारा लाना बाना परिंदे आने उड़ जाना तेरा

0: ये गाना सुनने के बाद हाथ अपने आप सर पे चला जाता है. मैड रिस्पेक्ट टू डिवाइन फॉर दिस सॉन्ग, वन ऑफ द टॉप 5 सॉन्ग्स इन देसी हिप हॉप. एट आरजे करेगा ऑन इंस्टाग्राम पर आओ एंड क्विकली इस इंडी पॉप क्विज का आंसर करो. डिवाइन एंड करण औजला ने एक कोलैब करके एक एल्बम रिलीज करी थी आज से 2 साल पहले. जल्दी बताओ उस एल्बम का नाम क्या है. काउंटडाउन का अगले वाला गाना अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी. 7 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. उड़ी उड़ी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4

0: आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खां की आवाज में एक गाने का नाम है ए अजनबी, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, इस हफ्ते भी दो पोजीशन ऊपर जम करके ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10, ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। कुछ गाने इस हफ्ते हॉट होते हैं, अगले हफ्ते नहीं, बट कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं एक एड्रेस बन जाते हैं हमारे लिए, एड्रेस टू अ मेमोरी, अ ट्रिप टू नॉस्टैल्जिया। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं। द सॉन्ग फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
2: आंखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती हैं दीवाना।
0: एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज

गाने का नाम है मायरी, साल 2000, एल्बम फिर धूम पलाश था इनकी आवाज में। जरा याद कीजिए यार वो जमाना, कैसेट की रील पेंसिल से घुमाना, इंतजार करते रहना कि मेरे वाला गाना आएगा। आई रिमेम्बर आई वॉज ऑब्वियसली इन स्कूल जब मैंने गाना सुनना शुरू किया था, बहुत अच्छी धुन लगती थी। एंड दैट लाइन, दैट बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलके मायरी, शायद मैं इतनी छोटी थी दैट मैंने उसका मतलब ही नहीं समझा, एंड मैं बस बहुत इतराती थी ये गाना सुन के, सजती थी सवरती थी। एंड एज वी कीप ग्रोइंग अप वो गाने समझ में आने लगते हैं, उनके पीछे के मतलब बदलते जाते हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे मायरी में वो अपनी माँ से ये कहानी बता रहे हैं ये भी नहीं समझ में आया था, लेकिन नाउ इट ऑल साउंड्स सो ब्यूटीफुल दैट वो जिस लड़की की तारीफें कर रहे हैं, जिस लड़की के बारे में बता रहे हैं, जिसकी याद उन्हें आ रही है, वो अपनी माँ को बता रहे हैं। पर यही तो बात है, गाना नहीं बदला यार, हम बदल गए। गाना 1998 में बना था, फ्रंटमैन पलाश सेन की आवाज, यूफोरिया द बैंड, जिसने आज भी ऑलमोस्ट आफ्टर 45 इयर्स ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कभी कोई फिल्म का गाना नहीं किया। द रियल ओजी पोस्टर बॉयज ऑफ पॉप म्यूजिक, अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, यूफोरिया द बैंड का गाना, गाने का नाम है मायरी, इज योर टिकट टू नॉस्टैल्जिया टुडे ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

I swear, गाने are like memories जो हमें transport कर देते हैं. I was taken back to my childhood home by listening to this song. पलाश सेन की आवाज में Euphoria the band का गाना Mairi still hits home exactly how it used to 10 years back or 20 years back. And that's why it's a classic. At RJ Kanega on Instagram पर आओ कोई भी गाना from the 90s, 2000s जो आज भी आपको लगता है it hits home buddy. मुझसे आगे शेयर करो. मैं और अश्काय माय साउंड प्रोड्यूसर हम आपके रिकमेंडेशंस को बहुत सीरियसली लेते हैं. वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. अगले वाले गाने की बारी. गाने का नाम है डीलर. दिलजीत दोसांझ की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. 18 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. डीलर इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडिया टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका, शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, ओनली शो ऑन मिर्ची जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री थी, हमारा 90s-2000s का इंडी पॉप क्लासिक था। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, लेकिन एक क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप। जसलीन रॉयल बादशाह का गाना इनाम वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। फिर एक नई नवेली एंट्री, ज़ारा खान स्केल्स का गाना मूव बॉडी ऑन गाना नंबर 9। संजू राठौर का बैंगल्स ऑन गाना नंबर 8। हर्ष नुसी का साड़ी सुन पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके इस हफ्ते था ऑन गाना नंबर 7। ऐश किंग का किनिया सोनी गोइंग स्ट्रॉन्ग ऑन गाना नंबर 6। इन ऑल ऑनेस्टी ये गाना इस काउंटडाउन का मेरा फेवरेट गाना है, अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी ऑन गाना नंबर 5। आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खा का ए अजनबी अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग ऑन गाना नंबर 4। दिलजीत दोसांझ का डीलर दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। The top 2 songs of the week, yet again, वही शफल हो रहा है ऊपर नीचे 17 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन, दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। एंड द न्यूमेरो ऊनो सॉन्ग ऑफ द वीक, मिट्टा रॉर का गाना, मिट्टा रॉर स्वरा वर्मा की आवाज में, मिट्टा रॉर की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते नंबर 2 पर था, एक पोजीशन ऊपर जंप करके इस हफ्ते शीशा इज ऑन गाना नंबर 1। ये दोनों गाने बैक टू बैक, बैरन ऑन नंबर 2, शीशा ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 2।

की बातें पीने बाद। शुभ हुए बादशाह।

0: Mirchi, it's hot.
1: Yeah. I like the way you move right there.

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। और अगर अभी फिलहाल तुम ऑफिस के ड्राइव पर हो, ट्रेन पकड़ रहे हो, स्कूल ड्रॉप कर रहे हो, या फिर किचन में चल रहा है तुम्हारा महासंग्राम मेकिंग ब्रेकफास्ट वाला, वेलकम होम। ये है मिर्ची मॉर्निंग्स जो अभी अभी शुरू हुआ है। यहाँ पर कॉफी तुम्हें सिर्फ जगाती नहीं है बल्कि एक्साइटिंग भी बना देती है, और चाय सिर्फ अदरक वाली नहीं होती बल्कि मिर्ची वाली होती है, और तुम्हारा ब्रेकफास्ट सिर्फ क्रिस्पी नहीं होता है बल्कि एकदम धांसू होता है। वैसे देसी एक्सपैट लाइफ भी कमाल की है ना। इंडिया में मम्मी पूछती है कि बेटा खाना खाया, और यहाँ पर सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है वेदर देखा आज का, अम्ब्रेला लिया, क्योंकि वेदर जो है यहाँ पर उसके भी मूड स्विंग्स होते हैं। तो अगले कुछ घंटों के लिए स्ट्रेस को बैक सीट पर रखो, मैं लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए मस्त म्यूजिक, फिल्मी गॉसिप, फन कॉन्वर्सेशन एंड वो एनर्जी जो मंडे को भी फ्राइडे जैसा फील करा दे। हाँ हाँ, एम्बिशियस गोल्स हैं और बहुत सारे

एक काम करने हैं तुम्हें, लेकिन मिर्ची पे इम्पॉसिबल भी प्लेलिस्ट में आ जाता है। आने वाले कुछ मिर्चीदार गाने तुम ऑफ एयर भी मुझसे दोस्ती बनाए रखो। फॉलो करो मुझे, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर, और व्हाट्सएप करना है तो 9033 मिर्ची इज माय नंबर, दैट्स 9033647244। ड्रॉप मी योर मैसेजेस एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

मुझे लगता है अगर हिस्ट्री के पास इंस्टाग्राम होता तो हर पोस्ट वायरल होती है ना। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, और चलो अब टाइम मशीन में बैठकर थोड़ा सा टाइम ट्रैवलिंग करते हैं। सबसे पहले चलते हैं 1540 में। इंग्लैंड के किंग हेनरी VIII ने अपने चीफ मिनिस्टर थॉमस कॉमवेल को ट्रीजन के लिए एग्जीक्यूट कर दिया। उस जमाने में HR मीटिंग्स बड़ी डेडली होती थी, नहीं? फिर आया 1821, जब जनरल होजे डे सान मार्टिन ने पेरू को स्पैनिश एम्पायर से आजादी दिलवाई। लेकिन 1914 में दुनिया का डायरेक्शन ही बदल गया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया और इसी के साथ शुरुआत हुई World War I की। एक ऐसा डिसीजन जो हिस्ट्री का पूरा चैप्टर रीराइट कर गया। और फिर 1976 में चाइना के तांगशान में एक डेविस्टेटिंग 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। आज उन सबको याद करते हैं और ग्रैटिट्यूड फील करते हैं उन सिंपल चीजों के लिए जो रोज हम इग्नोर कर देते हैं। हिस्ट्री ना हमें सिर्फ डेट्स नहीं देती बल्कि एक पर्सपेक्टिव भी देती है कि हमसे पहले लोगों की जिंदगी कैसी थी। अगर तुमको भी हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स पता है तो मुझे DM कर सकते हो। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला और ये है मिर्ची मॉर्निंग।
1: मिर्ची वॉच इट, मिर्ची वॉच इट।
0: और इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में एक ही दिन में 6 मेडल्स जीतकर टोटल 10 मेडल्स कर लिए हैं अब तक, और मेडल टेबल में हम पहुंच गए हैं 8th पोजीशन पर। अब ये हुई ना कोई मॉर्निंग मोटिवेशन वाली बात। सबसे पहले ह्यूज शाउट आउट टू शर्मिला धनकर, उन्होंने वुमेन्स शॉर्ट पुट F57 में गोल्ड जीतकर हिस्ट्री बना दी है। वो कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की पहली पैरा एथलीट गोल्ड मेडलिस्ट भी बन गई है। एब्सोल्यूट क्वीन एनर्जी। और हाई जंप में सर्वेश कुशारे ने 2.25 मीटर्स क्लियर करके सिल्वर जीता है, और ये भी हिस्ट्री है कॉमनवेल्थ गेम्स के मेंस हाई जंप में इंडिया का पहला एवर सिल्वर। वेट लिफ्टिंग भी फुल फॉर्म में है, ज्ञानेश्वरी यादव ने वुमेन्स 53 केजी में सिल्वर जीता है, और वलूरी अजय बाबू ने मेंस 79 केजीज में सिल्वर अपने नाम किया है। ओवरऑल टैली इज 2 गोल्ड जो की मीराबाई चानू एंड शर्मिला धनकर ने जीते हैं, एंड 5 सिल्वर जो ऋषिकांता सिंह, मुथुपांडी राजा, ज्ञानेश्वरी यादव, वलूरी अजय बाबू एंड सर्वेश कुशारे ने जीता है। और ब्रॉन्ज जीता है बिंदिया रानी देवी, शिल्पा शायला एंड जसप्रीत कौर ने। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है, इंग्लैंड सेकंड पर है, और इंडिया का मोमेंटम जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब ये हुई ना गुड वाली मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड ऑफ कोर्स व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 Mirchi, that's 9033 6472 4. Stay tuned and stay hot.

0: आज घर से निकलने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फोन ले लिया, कीज ले ली, वॉलेट ले लिया, अम्ब्रेला लिया, वेदर चेक किया. वेदर चेक करवाने के लिए मैं बोले तो प्रिसला आ चुकी हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स पर. अब देखते हैं वेदर का हाल चाल क्या है. फिलहाल टेम्परेचर है 68 डिग्रीज फारेनहाइट और स्काई जो है वो पार्टली क्लाउडी ही है, लेकिन फील हो रहा है 70 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास. देखो सुबह 6 से 8 तक तो स्काई इज मोस्टली क्लाउडी थे, लेकिन अगर तुम मॉर्निंग कम्यूट पे निकल चुके तो तुमने आराम से बादल आते हुए देख लिए होंगे. लेकिन असली ड्रामा जो है वो 2 बजे के बाद से शुरू होने वाला है, जब रेन एक्सपेक्टेड है. अगले 24 आवर्स में लगभग 32 मिलीमीटर्स की बारिश का फोरकास्ट है और पिछले 24 आवर्स में ऑलरेडी 14 मिलीमीटर्स की बारिश हो चुकी है. मतलब क्लाउड्स ने आज ओवरटाइम अप्रूव कर दिया है. आज का हाई रहने वाला है 82 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास, लो जाएगा 68 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास. कल से ऑलमोस्ट सेम टू सेम टेम्परेचर रहने वाला है, बस थोड़ा सा कम वार्म रहेगा. विंड्स बहुत ही अग्रेसिव है, आज गस्ट्स आर अराउंड 11 किलोमीटर पर आवर और साथ में रोड्स भी वेट रहने वाले हैं, तो इसको लाइटली मत लेना. और एक इम्पोर्टेंट हेड्स अप है, फ्लड वॉच इज इन इफेक्ट. इसका मतलब फ्लड हो ही रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं. तो अगर आफ्टरनून या इवनिंग में ट्रैवल करने वाले हो, स्पेशली लो लाइंग एरियाज में, तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहना बनता है, बिकॉज इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी. और हाँ, आज का वेदर जो है वो हेयर स्टाइल खराब करने वाला वेदर है, तो उस हिसाब से अपनी हेयर स्टाइल बनाकर बाहर निकलना, साथ में अपना SPF 50++++ लगाना बिल्कुल मत भूलना. कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, क्योंकि ढेर सारा पानी पीने से स्किन अच्छी होती है. एंड ऑफ कोर्स लेयर के प्लेयर बनो, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ. और अभी ऑफ एयर भी मिलते हैं एक्स और इंस्टाग्राम पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.
1: मिर्ची, इट्स हॉट.

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और वक्त आ गया है मिर्ची आवर का 3 का, जहाँ पर तुम्हें मिलती है 3 अपडेट्स। सबसे पहले इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी इस लेट नाइट सेल्फी वीडियो वाज ब्रीफली रिमूव्ड इन इंडिया बाय फेसबुक। सेवरल एक्स यूजर्स क्वेश्चन फेसबुक पेरेंट मेटाज अथॉरिटी टू रिस्ट्रिक्ट पीएम मोदीज पोस्ट ड्यू टू अ लीगल रिक्वेस्ट। नंबर 2 पर मेटा लेटर सेड दैट द वीडियो हैड बीन रिमूव्ड इन एरर, अपोलोजाइज एंड रिस्टोर्ड द पोस्ट एंड द गवर्नमेंट इज लुकिंग इनटू व्हाट हैपेंड। और फाइनली नंबर 3 पर तुम्हारे वॉलेट का फ्यूचर थोड़ा सा वाटरप्रूफ हो सकता है इंडिया में। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ ट्रायल फॉर ₹10 एंड ₹20 polymer plastic bank notes. Polymer notes last longer than paper notes, but don't worry, paper currency isn't going anywhere for now. And that's it for Mirchi Hour ka 3 for this hour. Main hoon Prisala tumhare saath mein. Sunte rahe the Mirchi Mornings, aur mujhse connect bhi kar sakte ho. Insta aur X par mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

Mirchi. It's hot.

मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो तो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। यू नो फुटबॉल लेजेंड लायनेल मेसी ने अपने अर्जेंटीना टीममेट्स को वर्ल्ड कप के बाद एक सुपर थॉटफुल गिफ्ट दिया है। नहीं, कोई लग्जरी कार नहीं है और ना ही डायमंड चेन्स है। मेसी गिफ्टेड एवरीवन अ पर्सनलाइज्ड MATE किट। और अगर तुम सोच रहे हो कि MATE इज मेट लाइक अ फ्रेंड, तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। MATE इज माचे, अर्जेंटीना का ट्रेडिशनल हर्बल ड्रिंक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम देसी लोगों के लिए चाय सिर्फ चाय नहीं बल्कि एक इमोशन है, एग्जैक्टली उसी तरह हर किट में था एक कस्टमाइज्ड ट्रैवल बैग प्लेयर के नाम के साथ, एंड साथ में है गोल्ड कलर्ड स्टैनली थर्मस, एक माचे कप एंड एक मेटल स्ट्रॉ, और ऑफ कोर्स यर्बा माचे, ताकि टीम की यादें सिर्फ मेडल्स तक ही सीमित ना रह जाए। देखा, कभी कभी सबसे बेस्ट गिफ्ट वो होता है जो कहता है कि हमने ये जर्नी साथ में जीती है। वैसे अगर तुम भी अपने ऑफिस टीम को गिफ्ट देने वाले होते तो शायद सबसे पहले कॉफी मग सेफ ऑप्शन होता है ना, वरना बजट भी रेड कार्ड दिखा देता तुमको। वैसे तुमको क्या लगता है, वॉट इज द बेस्ट गिफ्ट टू गिव To you? Let me know. Mirchi Pris is my handle name, that is MIRCHIPRIS. Instagram or X पर और WhatsApp पर नंबर है मेरा 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: आभारी हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये भजन अच्छी लगी होगी। मेरा नाम है भजन कुमार। फॉलो मी ऑन माई चैनल।
1: आज अगर तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है ना, तो सबसे पहले अपने आप को एक टाइट हग दे दो, साथ में अपने आप को केक भी खिलाना बढ़िया वाला, और कैलोरीज को बोलना आज के दिन वेट करो। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो तुम मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। एंड अब तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। मैं दिल से विश करती हूँ कि तुमको इस साल तुम्हारी लाइफ में इतनी खुशियां मिले जितनी की फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह सुबह के मैसेजेस आ जाते हैं, और साथ में तुम्हें ढेर सारी प्रोस्पेरिटी एंड हेल्थ एंड वेल्थ भी मिले। अब चलो पता करते हैं आज तुम्हारे साथ कौन से सेलिब्रिटीज अपना बर्थडे शेयर करते हैं। सबसे पहले साउथ इंडियन सिनेमा के दो एब्सोल्यूट हार्टथ्रॉब्स, धनुष एंड दुलकर सलमान। एक ने हमें व्हाई दिस कोलावेरी डी दिया है, और दूसरे ने हर लैंग्वेज में चार्म की मास्टर क्लास दी है। और बॉलीवुड की पावर हाउस परफॉर्मर हुमा कुरैशी का भी आज हैप्पी वाला बर्थडे। अब हॉलीवुड की तरफ देखे तो जॉन डेविड वॉशिंगटन, एलिजाबेथ बर्कली, लोरी लॉकलिन एंड डस्टिन मिलिगन, और एक स्पेशल मेंशन जिम डेविस के लिए जो क्रिएटर हैं गारफील्ड के। तो अगर तुम्हारा मूड भी मंडे जैसा है ना, तो गारफील्ड ऑफिशियली अप्रूव करता है उसे। अब बर्थडे स्टार एक प्रॉमिस करो कि आज थोड़ा सा कम स्ट्रेस लोगे, थोड़ा ज्यादा हंसोगे, और अपने लिए कुछ स्पेशल जरूर करोगे आज के दिन, बिकॉज टुडे इट्स ऑल अबाउट यू। और अगर बर्थडे विशेज में है मिर्चीदार गाने, तो वो भी प्ले करने वाली हो तुम्हारे लिए राइट हियर राइट नाउ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो सोशल पर भी। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल name on Instagram and X, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp par mera number hai 9033 mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Hi there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग। और अब सुनने वाले हो गोल्ड का लेटेस्ट रेट अपडेट।
1: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। टुडे मॉर्निंग गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,025, $4,025 पर ट्राउंस आज

0: गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। हम सब कहीं ना कहीं गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और राइट प्राइस एंड राइट टाइम का वेट करते हैं। अगर पिछले साल आज ही के दिन की बात को की जाए तो गोल्ड वॉज ट्रेडिंग अराउंड $3,300 पर ट्राई आउंस, लेकिन इस साल जनवरी के प्राइस की बात की जाए तो गोल्ड वॉज ट्रेडिंग अराउंड $5,300 पर ट्राई आउंस, 3,300 से $5,300 पर ट्राई आउंस गोल्ड के प्राइसेस इस साल के बिगनिंग में ट्रेड कर रहे थे। सो हमें लगता है गोल्ड करेक्शन के साथ आज करंटली $4,025 पर ट्राई आउंस ट्रेड कर रहा है। जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहें, चाहे पैम्प सर्टिफाइड गोल्ड एंड सिल्वर बार्स हो, 1 ounce, 10 ounce, 100 ग्राम और किलो बार्स, दे आर ऑल अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट एट राज ज्वेलर्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन्वेस्टमेंट गोल्ड एंड सिल्वर बार्स के ऊपर ओवर $1,000 परचेज पर सेल टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं है इन द स्टेट ऑफ न्यू जर्सी। सो आइए गोल्ड में एंड सिल्वर में राज ज्वेल्स के साथ इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग।
1: एंड देयर यू हैव इट, गोल्ड का लेटेस्ट रेट अपडेट सुना तुमने एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसिला। गो एंड फॉलो मी इंस्टा एंड एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033MIRCHI, 9033647244। अब मिर्ची दर बैंगर्स का टाइम है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब सुनने वाले हो तुम मिर्ची आवर का 3, जहाँ पे तुम्हें मिलती हैं 3 अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले स्टूडेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट से जुड़ी सेलिब्रेशन वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। वीडियोस को लेकर ऑनलाइन मिक्स रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कहा कि विक्ट्री शुड ऑल्सो हैव ह्यूमिलिटी, यानी कि जीत तो सेलिब्रेट जरूर करो लेकिन सेंसिटिविटी के साथ। प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स ने भी अपनी तरफ से सेलिब्रेशन को वॉलंटियर्स के अप्रिसिएशन का मोमेंट बताया है। नंबर 2 पर एक्टर एंड MP कंगना रनौत ने भी प्रोटेस्ट रील्स पे अपने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन शेयर किए हैं। सोशल मीडिया पर भी इस इशू को लेकर अलग अलग ओपिनियंस सामने आ रहे हैं। एंड फाइनली नंबर 3 पर क्रिकेट से इंडिया ने श्रीलंका के अगेंस्ट अपकमिंग टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। कैप्टन है शुभमन गिल और सबसे एक्साइटिंग बात है कि 33 ईयर ओल्ड ऑलराउंडर सारांश जैन को मिला है उनका मेडन टेस्ट कॉल अप। सीरीज 15 अगस्त से गोल में शुरू होने वाली है। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 विद मी प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी चलाते हैं मिर्ची, देयर बैंगर्स फॉर यू, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड वेलकम टू राशि जोन। ये पहला पार्ट है जहाँ पर पहली छह राशियों की बात करने वाले हम ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: एरीज यानी कि मेष राशि, आज फ्रेंड्स और फैमिली की एडवाइस को इग्नोर मत करना यार। कभी कभी आई नो उससे बेटर होता है, टेल मी मोर। लकी कलर फॉर यू इज ऑरेंज, लकी नंबर इज 17। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज कोई शाइनी न्यू आइडिया बहुत ही टेम्पटिंग लगेगा, बस एक्साइटमेंट में यस बोलने से पहले थोड़ा सा होमवर्क कर लेना, स्पेशली वर्क लाइफ में। लकी कलर फॉर यू इज मिंट कलर, लकी नंबर इज 24। जेमिनी यानी मिथुन राशि, रूल्स अच्छे होते हैं लेकिन तुम्हारे इनोवेटिव आइडियाज भी कम नहीं है। अगर दिल कह रहा है डिफरेंट सोचो तो रिस्पेक्टफुली अपना पाथ खुद चूज करो। लकी कलर फॉर यू इज इलेक्ट्रिक नियॉन, लकी नंबर इज 9। कैंसर यानी कर्क राशि, फ्यूचर के प्लान्स बनाओ लेकिन पेंसिल से, लाइफ कभी भी एडिट्स मांग सकती है, फ्लेक्सिबल रहना इज टुडेज सुपर पावर। लकी कलर फॉर यू इज पर्पल, लकी नंबर इज 31। लियो यानी कि सिंह राशि, जो कमिटमेंट किया है उससे शाइन कराओ, और हाँ अपने एटीट्यूड का सॉफ्टवेयर अपडेट करोगे तो रिजल्ट भी प्रीमियम वर्जन वाले आएंगे। लकी कलर फॉर यू इज येलो, लकी नंबर इज 5। वर्गो यानी कन्या राशि, आज किसी की ड्रामा सीरीज में गेस्ट अपीयरेंस मत देना, डिस्टेंस इज पीस एंड पीस इज प्राइसलेस। लकी कलर फॉर यू इज टील, लकी नंबर इज 14। बस ये याद रखो, स्टार्स सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, डेस्टिनेशन तुम्हें खुद चूज करनी है। और अभी मिलते हैं थोड़ी सी देर में जब मैं लेकर आऊंगी राशि जोन पार्ट 2। तब तक कि तुम सुनो मिर्चीदार बैंगर्स और मुझे फॉलो करो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर भी लिख लो, 9033 मिर्ची इज माई नंबर, 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और चलो देखते हैं बाकी की बची हुई छह राशियों का क्या हालचाल है ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लीब्रा यानी कि तुला राशि, दिल अच्छा है लेकिन आज ब्लाइंड ट्रस्ट से बचना जरूरी है। काइंड रहना अलग बात है, केयरलेस रहना अलग बात है, समझे। लकी कलर इज रोज पिंक, लकी नंबर इज 22। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, कुछ चेंज करने का मन है, ग्रेट, बस इमोशनल इम्पल्स पे लाइफ का सेंड बटन मत दबाना, स्लीप ओवर इट फर्स्ट। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 11। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, आज तुम अपनी बात पे कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, बस ईयर्स को ओपन रखना, कभी कभी बोनस विजडम फ्री में यहाँ वहां से सुनकर मिल जाता है। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 36। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, थ्रेट से बेटर कॉन्वर्सेशंस होती हैं। आज काम वर्ड्स ज्यादा पावरफुल रहेंगे देन लाउड रिएक्शंस। लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक, लकी नंबर इज 8। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, अगर कोई थोड़ा सा डिस्टेंट लग रहा है तो उसे स्पेस दे दो ना यार, हर साइलेंस का मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है, हर कोई तुम्हें अबैंडन करने को नहीं निकला है, कभी कभी लाइफ बस बिजी होती है लोगों की। लकी कलर इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 27। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी कि मीन राशि, बजट बनाना स्मार्ट है लेकिन अपनी खुशी का बजट जीरो मत कर देना, इस वीकेंड अपने लिए एक छोटू सा ट्रीट अलाउ कर दो। लकी कलर फॉर यू इज सी ब्लू, लकी नंबर इज 19। बस इतना याद रखो, हॉरोस्कोप एक नज होता है, रिमोट कंट्रोल तुम्हारे ही हाथ में है। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, और व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। ड्रॉप मी योर मैसेजेस एंड ऑफ कोर्स अभी मिर्ची दार बैंगर्स मैं ड्रॉप करने वाली हूँ। Stay tuned and stay home.

बात नोटिस की है कि मॉर्निंग में चाय, कॉफी और मिर्ची मॉर्निंग्स एक टाइम पर आकर खत्म हो जाते हैं, चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो। अब बस इसी नोट पर मेरा और तुम्हारा साथ यहीं पर खत्म होता है। मेरा नाम है प्रिसला, सुन रहे थे तुम मिर्ची मॉर्निंग्स। और जाने से पहले एक छोटा सा मनी मिनट। आजकल ना FCNR डिपॉजिट्स काफी डिस्कशन में है। FCNR बोले तो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट, इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट हेल्ड इन इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट इंडियंस या फिर पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन। और कुछ लोग इनके अगेंस्ट लोन लेकर एक्स्ट्रा रिटर्न्स अर्न करने की स्ट्रेटजी यूज करते हैं। सुनने में काफी स्मार्ट लगता है, लेकिन हर शॉर्टकट जो है वो एक्सप्रेस हाईवे नहीं होता है। बोरोइंग कॉस्ट बढ़ सकती है, टैक्स रूल्स या रेगुलेशंस चेंज हो सकते हैं, और अगर डिपॉजिट जल्दी तोड़ना पड़े या रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाए तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कम हो सकता है, या फिर कभी कभी कम्प्लीटली डिसअपीयर भी हो सकता है। इसीलिए फाइनेंस में भी वही रूल, रीड द फाइन प्रिंट बिफोर चेजिंग द हेडलाइन। वैसे भी देसी पेरेंट्स ने बचपन से एक ही लेसन दिया है, बेटा उधार सोच समझ के लेना चाहिए। और हम देसीज उसी एडवाइस पर अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान करते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ तो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में फ्री लंच सिर्फ ऑफिस की पैंट्री में भी आजकल मुश्किल से ही मिलता है। तो तुम भी फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से पहले अपनी सिचुएशन को समझो, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ो, और जरूरत हो तो क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर कर लेना, जो कि मैं नहीं हूँ ऑब्वियसली। मुझे न्यूज पता चली तो मैंने तुम्हें कन्वे कर दी, लेकिन इसके बारे में पूरी तरह छानबीन करने के बाद ही कहीं पर पैसे डालना या निकालना। चलो अब मैं निकलती हूँ यहाँ से, तुम भी स्माइल के साथ साथ अपना बाकी का बचा हुआ दिन कंटिन्यू करो, काइंड रहो, हाइड्रेटेड रहो और मिर्चीदार रहो, एंड ऑफ कोर्स खाओ पियो ऐश करो, मुझे याद करो, और अगर याद करोगे तो मुझे फॉलो भी कर लो। मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर भी लिख लो, 9033 मिर्ची इज माय नंबर, 9033647244। मिलती हूँ तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस, तब तक के लिए चाओ, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना कि आप कुछ पढ़ लेते हो और वो चीज जो है वो आपके दिमाग में जाकर एकदम सही जगह पर पिंच करती है। ऐसा ही कुछ मैंने कल पढ़ा, और जब मैंने पढ़ा ना तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने कहा यार ये तो मैं आपको सुना के ही रहूंगी।
1: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tuned in with me on Mirji. और मैंने ना चंद लाइन्स पढ़ी और मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो कितना रेजोनेट करता है यार लाइफ से। मैंने कहा कि यार आप बड़े शौकीन हो इन सारी चीजों के, तो आपको भी सुनाती हूँ ये चीज। तो बात कुछ ऐसी है कि एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितलियों का दीवाना था, थक कर आना स्कूल से फिर भी खेलने जाना था, बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था, रोने की वजह ना थी ना हंसने का बहाना था, क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। देखा, लगा ना, वाकई में लगा ना। मतलब हम अपनी लाइफ में अलग ही अडल्टिंग का जोन जो है वो लेकर बैठे हुए होते हैं, अपनी लाइफ चल रही होती है, कट रही होती है, फिर एकदम से आप कुछ पढ़ लेते हो, आप कुछ देख लेते हो और फिर आपको लगता है ओ नो, हाँ यार वो भी क्या जमाना था और बचपन हमें जरूर याद आना था। तो चलो फिर थोड़ा और याद करते हैं 90 के जमाने को, और मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को उसी तरफ घुमाती हुई 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मेरा ना समीर सोनी पर बहुत बड़ा क्रश था एंड आई न्यू ही इज अ मॉडल, क्योंकि मैंने ना उनकी एक झलक दूध दूध दूध दूध वो वाले एड में देखी थी, और मैं जब भी देखती थी ना देख देख कर उछल जाया करती थी। तो जब उनकी मूवी चाइना गेट आई, उसे मैं कैसे मिस कर सकती थी यार।
0: मिर्ची VCR।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड नहीं, मैं इतना डिसीजन मेकिंग में नहीं थी कि सबको उठा के थिएटर लेकर चली जाती कि नहीं नहीं मुझे चाइना के थिएटर में देखने, नहीं नहीं इतनी हम लोगों की औकात नहीं हुआ करती थी एज किड। ये तो केबल पर जब मूवी आई तो मैंने उसको मिस नहीं किया। एंड वेल, ये समीर सोनी की डेब्यू फिल्म तो थी ही थी, लेकिन टेक्निकली समीर सोनी वॉज नॉट अ हीरो इन द फिल्म, ही वॉज एक्चुअली डूइंग अ सपोर्टिंग रोल, क्योंकि मेन लीड्स तो यार अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, डैनी डोंगजप्पा, ओम पुरी, ये सब थे। और इस फिल्म में समीर सोनी के ऑपोजिट थी ममता कुलकर्णी। लेकिन क्या आपको पता है कि जो चाइना गेट का पोस्टर बना था ना, उस पर ममता कुलकर्णी कहीं नजर नहीं आई थी। और इसके पीछे रीजन ये है कि ममता कुलकर्णी और राजकुमार संतोषी के बीच में एक मेजर फॉलआउट हुआ था। हालांकि इस लड़ाई के बाद वो वापस मूवी करने के लिए आई तो सही, लेकिन उसके बाद राजकुमार संतोषी ने उन्हें अपनी फिल्म में ज्यादा प्रमोट नहीं किया, और जो पोस्टर बना चाइना गेट का उसमें बाकी सारे एक्टर्स के साथ उर्मिला मातोंडकर की पिक्चर लगाई गई, ना कि ममता कुलकर्णी की। हालांकि उर्मिला वॉज इन द फिल्म फॉर जस्ट वन सॉन्ग एंड दैट वॉज छम्मा छम्मा। लेकिन ऑनेस्टली पूरी फिल्म करने के बाद भी ममता को इतना नाम नहीं मिला जितना कि उर्मिला मातोंडकर को एक गाना करने के बाद मिला था। लेकिन क्या आपको पता है इस पूरी कास्ट में एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अपना रोल निभाने के लिए न जाने कितने दिनों तक नहाया ही नहीं था। बताऊंगी आपको आगे थोड़ी देर में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। बोलो ये कौन सी मूवी का डायलॉग है?
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और सही जवाब है चाइना गेट। मतलब चाइना गेट में न जाने कितने सारे ऐसे डायलॉग्स थे जो कि आज तक मुझे याद है। एक तो ये डायलॉग, एंड देन देयर वाज दिस वन और डायलॉग जिसमें कि प्लेटफॉर्म का सीन होता है और एक जनाब दूसरे जनाब से पूछ रहे होते हैं कि भाई साहब आपके बजे में कितने घड़े हैं। अगला इंसान कहता है नौने पौ। I still use this dialogue in my life. हाँ, अगर पौने नौ बज रहे होते हैं और कोई मुझसे पूछ ले कि कितने बज रहे हैं तो मैं नौने पौ ही बोलती हूँ, पौने नौ नहीं बोलती। लेकिन coming back to China Gate, हाँ, ये जो फिल्म बनी थी इसके अंदर जो जगीरा का रोल प्ले करने वाले मुकेश तिवारी थे, जिनकी की ये पहली ही फिल्म थी, उन्हें न जाने कितने सारे अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया था फॉर हिज विलेनियस रोल। हाँ, और किया भी क्यों न जाना चाहिए था, इतना सराहा गया था उनका ये कैरेक्टर बिकॉज उन्होंने काम ही ऐसा किया था। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि अपने कैरेक्टर को बरकरार रखने के लिए, उसका लुक मेंटेन करने के लिए और जगीरा जैसा फील करते रहने के लिए मुकेश तिवारी ने न जाने कितने दिनों तक नहाया ही नहीं था। हाँ जी, वो बिल्कुल अपना परफ्यूम इस्तेमाल किया करते थे, एंड ही डिड नॉट टेक अ शावर जस्ट सो दैट ही लुक्स एज गंदा एज जगीरा। इसे कहते हैं मेथड एक्टिंग। सर्दियों में हम भी यही करते हैं। हाँ, वी ऑल्सो टेक अप अ कैरेक्टर एंड वी वॉन्ट टू लुक लाइक दैट कैरेक्टर, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन कि बहुत सारे लोग शावर नहीं ले रहे होते हैं सर्दियों में। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आपको दूरदर्शन का गुमशुदा की तलाश सेगमेंट याद है?
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। डीडी वन पर रोज शाम को जब न्यूज आया करती थी तो उसमें एक सेगमेंट हुआ करता था, गुमशुदा की तलाश। याद तो हो गए यार, जो आज हमारे लिए अपने दोस्तों के लिए एक ताना बन के रह गया है कि हम अब उनके लिए कहते हैं कि तुम आते नहीं हो इसलिए हमें गुमशुदा की तलाश है। लेकिन ये कभी एक सीरियस सेगमेंट हुआ करता था जहां गुमे हुए लोग जो है उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही होती थी वाया द टेलीविजन। बट एक राज की बात बताऊं मैं आपको, जब इस सेगमेंट में गुमशुदा लोगों की पिक्चर स्क्रीन पर दिखाई जाती थी ना, तो ऑनेस्टली अगर वो इंसान मेरे पास भी बैठा होता ना तो मैं भी उसे नहीं पहचान पाती। वैसे तो आज भी किसी लड़की का फोटो देखकर उसे ढूंढना मुश्किल हो जाए, क्योंकि बिना मेकअप ऑफ कोर्स किसी का चेहरा समझ नहीं आता और बिना मेकअप कोई आजकल फोटो नहीं खिंचवाता। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, हम बच्चे ना इस सीरियस सेगमेंट को मजाक बना दिया करते थे। जब कोई फोटो स्क्रीन पर दिखती थी ना तो हमारा बोलना शुरू हो जाता था एक दूसरे की टांग खींचते हुए और एक दूसरे को छेड़ते हुए कि अरे देख तेरी फोटो दिखा रहे हैं टीवी पर। और पता नहीं इसमें छेड़ने वाली बात क्या थी और छिड़ने वाली बात क्या थी कि छेड़ने वाला छेड़ता था और छेड़ने वाला भी बुरी तरीके से तुनक जाता था और छिड़ जाया करता था। बट जो भी था भाई, बात ये भी कितनी सही है ना कि आज किड्स हम सीरियस चीज में भी फन ढूंढ लेते थे। एंड आई होप कि आप आज भी इस प्रथा को फॉलो करते हो, बिकॉज लाइफ को हम सीरियसली नहीं ले सकते बाबू मुशाए। क्यों? क्योंकि लाइफ इटसेल्फ इज यूज्ड टू क्रैकिंग जोक्स ऑन अस। इसी बात पर ताल से ताल मिला। कमिंग अप दिस नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: वो गाना है जो आपको ऑफिस में वायरल कर सकता है। मोहित चौहान ने गाया इतनी मस्ती में ना इस गाने को, आई स्वेयर। यू नो व्हाई आपको वायरल कर सकता है? क्योंकि अगर इस गाने को आप ईयरफोन्स पे सुन रहे हो ना, तो आप आसपास की दुनिया जो है ना उसको तो भूल ही जाओगे, और फिर आसपास की दुनिया को भूलने के बाद जो आप अपने आप में खो जाओगे और नाचते हुए नजर आओगे और अजीब अजीब सी आप क्रियाएं करते हुए नजर आओगे ना, तो ऑफकोर्स वायरल होना तो बनता है ना बॉस। ये गाना ही वही है जो आपको दुनिया भुला देता है, आपकी करंट प्रॉब्लम्स जो है वो भुला देता है, और आपको सिर्फ और सिर्फ जिंदगी की ताल पर नहीं इस गाने की ताल पर नचा देता है।
1: सारा जमाना ए सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और हम जो म्यूजिक के इतने दीवाने हैं मेरे यारा, वही तो आ जाते हैं रोज रोज ये कहने के लिए कि मान ना मान करो गानों की पहचान। अब सिंस मुझे पता ही है कि आप म्यूजिक के इतने फैन हो और म्यूजिक आपके लिए थेरेपी है, तो यहीं पर मैं एक दाव खेल जाती हूँ और रोज आपके लिए एक सवाल गाने की सूरत में चलाती हूँ और दो गानों की धुनों को मिक्स करके आती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि बताओ यार ये दोनों गाने कौन से हैं। तो आज की जो दो धुनों का मिक्स है वो है कुछ यूं। Give it a listen.

बस जी, अब आपको डीएम करना है माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और बता देना है कि ये दो कौन से गाने हैं जो अभी आपने सुने। मिर्ची सारा इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, याद रखिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड रहिए विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आई एम नॉट टू श्योर आपने अर्जुन रामपाल और मनीषा कोइराला की मोक्ष देखी है कि नहीं, क्योंकि ये फिल्म कब आई कब गई पता ही नहीं लगा, लेकिन मैंने जरूर देखी है क्योंकि यार केबल पे जो फिल्म आती थी ना रात के 12 बजे के बाद वो मैं डेफिनेटली देखा करती थी।
2: मिर्ची थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, ये फिल्म नहीं, लेकिन इस फिल्म का एक गाना ऐसा है जिसकी पूरी की पूरी धुन, यानी कि जो म्यूजिक है इस पूरे पूरे गाने का, वो कट कॉपी पेस्ट है, थैंक्स टू मिस्टर राजेश रोशन, जिनका म्यूजिक इस गाने में दिया गया है। द गाना इज दिस वन।

0: जो सनसनाए, क्यों जिस्म थर थराए, कोई बताए मुझको।
1: और इसे उठाया गया है फ्रॉम एन आर्टिस्ट जिनका नाम है वैंगेलिस, और इन्होंने ये म्यूजिकल कॉम्पोजिशन बना के बस छोड़ दिया था, शायद इसी दिन के लिए कि एक दिन राजेश रोशन आए, यही म्यूजिक ऐसा का ऐसा उठाएं और इसको अपने गाने के बेड पे लगाएं और गाना चलाते जाएं।

फिलहाल के लिए डेफिनेटली नॉट दिस ट्रैक, लेकिन कमिंग अप अनदर वन आपके लिए, झूम जाओगे। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: हम आपके एक और एक ऐसी फिल्म है जिसको मैंने 175 बार देख लिया होगा और आज भी देयर इज अ डे जब मूड बनता है और हम एक दूसरे को कहते हैं हम आपके एक और देखे क्या।
2: ये है नब्बे की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। देखो यार, जज करना है तो जज कर लो। मैं तो भाई हूँ सूरज भरजातिया फैन, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। और हम आपके कौन को इतनी बार देखने के बाद वर्ड टू वर्ड, डायलॉग टू डायलॉग और सीन टू सीन मुझे चीजें याद है। नाउ देयर इज अ सीन जब घर में खुशखबरी आती है, यानी कि बच्चे की किलकारी जो है वो सुनाई देती है। सब हॉस्पिटल में जो थिएटर होता है, ऑपरेशन थिएटर, उसके बाहर वेट कर रहे होते हैं कि कब बच्चे की किलकारी आए। और अधिकतना गाना वहीं से ही शुरू होता है, राइट। एंड अब डॉक्टर चाची जो है वो बाहर आती हैं और ये खबर सुनाती है कि लड़का हुआ है। एट दैट टाइम सलमान खान एकदम एक्साइटेड होकर हिमानी शिवपुरी को अपनी गोद में नहीं उठा लेते। दैट इज डॉक्टर चाची इन द मूवी हम आपके हैं कौन। उस वक्त दैट सीन वॉज एक्चुअली नॉट प्लान्ड, वो सलमान खान ने एकदम से कर दिया था। एंड हिमानी शिवपुरी का इस पर रिएक्शन ये था कि उन्होंने हल्के से ना सलमान खान को एक चाटा मार दिया था, बिकॉज वो चौंक गई एकदम से कि ये क्या हुआ। And she in an interview told कि you know सलमान खान was a prankster and you know ऐसी हरकतें वो कुछ ना कुछ करते ही रहते थे और ये भी एक वैसी ही सी हरकत थी। अब ये सारी चीजें जो है उस सीन में कैमरे पे कैप्चर हुई तो सूरज भरजातिया ने भी डिसाइड किया कि इस सीन को रखते हैं, हम इसमें टेक नहीं लेते हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये अच्छा लग रहा है। एंड एक्चुअली ये कितना अच्छा लग रहा है, आई एक्चुअली लव दिस सीन जब वो डॉक्टर चाची को गोद में उठा के बच्चे की तरह खिला रहे होते हैं। आज के जमाने में है कोई माइका लाल जो ऐसा कर सकता है? ना मुन्ना ना, बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

हमारी आज की पीढ़ी है उन पर तो नाम लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उन पर नाम टाइप्ड ही आते हैं, मेड टू ऑर्डर। लेकिन बैक इन आवर स्कूल टाइम्स, स्कूल खुलने से पहले इट यूज्ड टू बी अ टास्क कि हम मम्मा के साथ बैठकर अपनी बुक्स और कॉपीज पर कवर चढ़ाया करते थे, फिर उसके बाद तुम्हें चेरी ऑन द टॉप की तरह बुक्स पर लगाया करते थे, और फिर लास्ट लेग होता था सब किताबों पर हमारा नाम, क्लास और सेक्शंस लिखे जाना। और तुम होते भी तो कितनी वैरायटी के थे यार, कहीं फ्लावर्स वाले तो कहीं कार्टून्स वाले, और बीटी तो तब होती जब स्कूल अपनी तरफ से बोरिंग वाले लेबल्स खरीदने को कंपल्सरी कर चुके थे, तब लगता था कि कितना काम है यार। लेकिन आज जो काम करते हैं उनके बीच लगता है कि यार वो भी क्या मस्त काम हुआ करता था जिसे हम कितनी सीरियसली लिया करते थे। एक दिन अपने फन के लिए आई डिसाइडेड कि आज मैं अपने नेफ्यू की किताबों पर कवर्स चढ़ाऊंगी और स्टिकर्स लगाऊंगी और उनपे उसका नाम, क्लास, सेक्शन ये सब लिखूंगी। मैं बड़ी एक्साइटेड थी इस काम को लेकर। फिर पता लगा कि मेरी भाभी ने तो किसी को पैसे देकर ये काम करवा लिया है और लेबल पर नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एवरीथिंग इज प्रिंटेड। सुन रहे हो, तुम्हारी आज की जनरेशन भी ना काफी तरक्की कर चुकी है, लेकिन मुझे फिर भी तुम पसंद हो। तुम्हें आज भी अपने ख्यालों में पढ़ती तुम्हारी सारा। एंड नाउ कमिंग अप अ ट्रैक जो आज तो प्यार मोहब्बत की याद दिलाता है, लेकिन ये डायलॉग हमने क्लास मॉनिटर्स से बहुत सुना है जब हम बातें खूब किया करते थे क्लास में, तो क्लास मॉनिटर्स यही कहा करते थे कि कुछ ना कहो। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear, आजकल के जमाने के name label और हमारे time में sticker कहलाने वाले.
2: यादों को चिट्ठी.
1: आज स्टेशनरी देखती हूँ ना तो चौंक जाती हूँ. आजकल तुम्हें पता है जो तुम

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: उफ, ये सवाल हम अक्सर प्यार से करते ही करते हैं। कौन सा सवाल भाई? कैसेट की साइड ए का दूसरा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में दिस नशीला गाना।
3: प्यार तूने क्या किया, ए प्यार तूने क्या किया।
1: बट डू यू नो, इस गाने की म्यूजिक की इंस्पिरेशन एग्जॉर्सिस्ट 2 मूवी की रीगन थीम से ली गई है। बट इजंट इट कूल कि पल में डराने वाली म्यूजिक को बड़ी खूबसूरती से प्यार में गिराने वाली म्यूजिक बना दिया। और ये काम करने वाले इंसान थे द म्यूजिक कंपोजर ऑफ दिस ट्रैक संदीप चौटा। और इस गाने में ना मुझे ये लाइन बहुत ऐप लगी कि पहली दफा उसे देखकर होने लगा कुछ ऐसा असर, खुद से हुई मैं बेखबर, मैं हूँ यहाँ दिल मेरा है वहाँ। अरे अरे अरे अरे, आप कहाँ चल दिए, अभी तो ये गाना आपको पूरा सुनना है यार, तब इस गाने में गहराई से खो जाइएगा। पर पहले मेरा खुदा हाफिज कबूल तो करिए। तो इसी के साथ मैं आपसे कहती हूँ हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिली जाती हूँ ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। अपना ख्याल रखिएगा और हम फिर मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम बट नॉट द सेम डे। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani jeans with Charu, only on Mirchi.

one of the finest and most handsome villains, Danny. मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, या डैनी डेंजोंगपा। इनका जन्म सिक्किम में हुआ था, स्कूली पढ़ाई नैनीताल में, कॉलेज की पढ़ाई दार्जिलिंग में, और फिर फिल्मी पढ़ाई FTII पुणे में। वैसे ये ना इंडियन आर्मी में जाना चाहते थे, इनफैक्ट उनका एडमिशन आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में भी हो गया था, लेकिन कुछ फैमिली रीजंस की वजह से उन्होंने वहां से एडमिशन विड्रॉ कर लिया। फिर FTII में भी वो म्यूजिक सिंगिंग का कोर्स करने गए थे क्योंकि वो बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन उसमें एडमिशन नहीं मिला तो एक्टिंग में एडमिशन ले लिया। यहीं पर उनकी दोस्त बनी जया भादुरी जी, जिन्होंने इनको सजेस्ट किया कि ये अपना नाम थोड़ा छोटा कर ले, क्योंकि उनका असली नाम सेरिंग फुनसोक डेंजोंगपा था। इनफैक्ट जया जी ने ही इनको ये डैनी नाम दिया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: 1979 की हॉरर फिल्म और कौन का ये गाना किशोर कुमार की आवाज में। अमित खन्ना ने ये गाना लिखा है, कंपोज्ड बाय बप्पी लहरी। एंड बप्पी दा ने ना इस गाने की कुछ ट्यून 1982 की फिल्म नमक हलाल के गाने में भी यूज की थी। मतलब इस गाने की जो स्टैंजास की ट्यून है ना, पैराग्राफ की, आपने सुने थे? एक बार वापस से सुनते हैं।
1: किसी को न पता चला क्या हो गया, ऐसी मिली नजरे के दिल खो गया।
0: समझ गए होंगे कौन से गाने में यूज हुआ है। नहीं, नमक हलाल का थोड़ी सी जो पीली है उसके स्टैंजास की ट्यून भी ऐसी है, सुनिए।
1: मेरा है जमाने से अलग रास्ता, मुझे भला दुनिया से क्या वास्ता।
0: और यहाँ जो हम सुनने वाले हैं वो है नमक हलाल का एक और आइकॉनिक सॉन्ग, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: 1981 की फिल्म नसीब का एक गाना है जिसमें सारे एक्टर्स विलन के अड्डे पे डांस कर रहे होते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, मतलब अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, रीना रॉय, किम, ये सब फैंसी ड्रेसेस में होते हैं और विलन के अड्डे पे डांस कर रहे होते हैं। अब इसकी शूटिंग की एक इंटरेस्टिंग बात एक इवेंट में ऋषि कपूर साहब ने शेयर की थी, सुनिए।
1: सो पूरे गाने में सब लगे हुए थे एंड यर शत्रुघ्न सिन्हा नॉट बॉदर्ड सिटिंग ऑन द चेयर, उनकी वजह से रीटेक पे रीटेक एंड ही कुडंट केयर लेस। देन मनमोहन जी गॉट एन आइडिया, जैसे कोई लंबा आदमी हो जो डांसर हो, ही वॉज कॉल्ड टू एक्चुअली डू डबल ऑफ शत्रुघ्न सिन्हा एंड डू दैट कॉसैक डांस। नाउ हम सब लगे हमें अपनी तरफ से जोर लगा रहे हैं यार, वी गॉट टू डू बेस्ट इन दिस दैट, एंड यहाँ शत्रुघ्न सिन्हा कैमरे के पीछे बैठ के इन हिज ओन इनिमिटेबल स्टाइल, शाबाश करो डांस, ये करो, एंड ही हैज अ डबल डूइंग हिज बॉडी डांस। एंड द ट्रेजेडी ऑफ दिस इज दैट व्हेन द सॉन्ग वाज कंप्लीटेड, व्हेन वी सॉ ही टुक अवे ऑल द क्रेडिट आल्सो ऑफ द बॉडी सॉन्ग, दे ऑल सेड के यार शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या डांस किया यार।
0: नेक्स्ट टाइम आप जब ये गाना देखें तो ध्यान रखें कि जहां मुश्किल स्टेप्स है वहां शत्रुघ्न सिन्हा साहब आराम फरमा रहे हैं और उनका बॉडी डबल नाच रहा है। फिलहाल ये गाना सुन लेते हैं यहाँ पर पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mitchie. It's hot.
1: Purani jeans with Charu, only on Mirchi.

1964 की फिल्म मेरा साया का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग संग बाय लता मंगेशकर, कंपोज्ड बाय मदन मोहन एंड रिटन बाय राजा मेहदी अली खान। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म का नाम ना पहले सिर्फ साया होने वाला था, लेकिन फिर जब ये गाना बना, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो ये मेरा साया जिस तरह से इस गाने में बोला गया है ना, वो इतना सुंदर साउंड कर रहा था कि इस फिल्म की टीम को लगा कि इस फिल्म का नाम मेरा साया होना चाहिए, तो नाम बदल दिया गया। चलिए नेक्स्ट गाना सुनते हैं जिसमें भी ऐसी ही कोई फीलिंग दी जा रही है कि आप जहां भी जाएंगे हमें ही पाएंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani jeans with Charu, only on Mirchi.

1981 की फिल्म कुदरत का ये सुंदर गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान काफी बदसूरत से इंसिडेंट्स हुए थे, क्योंकि राजेश खन्ना साहब की सुपरस्टारडम उस टाइम डिक्लाइन पे थी। वो काफी अपसेट इनसिक्योर रहते थे। ऐसा सुनने में आता है कि विनोद खन्ना साहब, वो भी इस फिल्म में, तब कुर्बानी के बाद काफी हिट हो गए थे, लेकिन उनका ऐसे हिट होना राजेश खन्ना साहब को थोड़ा रास नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कुदरत फिल्म के LP रिकॉर्ड से विनोद खन्ना साहब की फोटोज थी प्रमोशन में, वो हटवा दी कि भाई मेरी फिल्म में मेरी फोटो लगेगी। अभी क्या पता यार, सुपरस्टार होना और फिर सुपरस्टारडम का डिक्लाइन होना कैसा फील होता होगा। फिलहाल यहाँ पे फुल फील वाला सुंदर गाना सुनेंगे, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

मैं ना जितेंद्र जी को जब भी देखती हूँ मेरे मन के बैकग्राउंड में एक डायलॉग चल जाता है, ओए मेरे गरम मसाले। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। बिकॉज जब मैं छोटी थी आई थिंक मैंने उनकी पहली फिल्म जो देखी थी वो थी कारवां। हमारे घर में वीडियो कैसेट थी एंड मुझे उनपे ऐसे छोटा सा थोड़ा सा क्रश भी हो गया था, इतने हैंडसम लग रहे हैं वो इस फिल्म में। तो इन द फिल्म वो और अरुणा ईरानी एक ही कारवां में होते हैं, मतलब वो जो शहर शहर जाके तमाशा दिखाता है कारवां उसका पार्ट होते हैं। और अरुणा ईरानी इनको लाइक करती है, फ्लर्ट करती रहती है और इनको प्यार से गरम मसाला बुलाती है, ओए मेरे गरम मसाले। वैसे आपको पता है इसी 1971 की कारवां फिल्म के बाद अरुणा ईरानी जी को एज एन एक्टर एज अ डांसर सीरियसली लिया जाने लगा था। उनको फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला था। और इसमें जो उनके डांसेस थे, फिर चाहे दिलबर दिल से प्यारे वो गाना हो या ये वाला गाना हो जो हम सुनने वाले हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: वहीदा रहमान जी फिल्मों के सेट्स पे ना ज्यादा नहीं बोलती थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस वजह से कई बार डायरेक्टर्स के साथ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती थी, बिकॉज ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था रोल को लेकर, सीन को लेकर। कितने ऐसे डायरेक्टर्स थे जो बिना कहे उनकी बात समझ जाते थे या वो उनकी बात समझ जाती थी। सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: कम, बहुत कम। ज्यादातर डायरेक्टर्स ये कहते थे, भाई बात नहीं बनी, इसको और थोड़ा कुछ कीजिए। तो मैं पूछा करती थी, कुछ का क्या मतलब? ये जो कैरेक्टर है बहुत हार्श है, यानी समझदार है, यानी प्रिटेंशियस है, यानी क्या है? नहीं, ये सीन जैसा भी है कि उसको जरा आप ऊंचा करके कीजिए। मैंने कहा ऊंचा से मतलब थोड़ा, मतलब थोड़ा लाउड होना चाहिए। और मेरा बेसिक नेचर और मेरा कैरेक्टर प्ले करने का रवैया ज़्यादातर यू नो अंडर प्ले करना, स्ट्रेन्ड एक्टिंग, तो उसमें ज़रा मुश्किल हुआ करती थी। एक गुरदत्त जी थे, फिर एक अशित सेन, और विजय आनंद से मेरी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी। तो बहुत कम लोग मुझे मिले जो यू नो कि वो जो कह रहे मैं समझ जाऊँ, जो मैं कहना चाहती थी मेरे से यू नो अग्री करते।
0: वैसे देवानंद साहब के साथ भी इनकी बहुत जमती थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची के साथ
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

1981 की सुपर डुपर हिट फिल्म तेरे मेरे बीच में का ये गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये रति अग्निहोत्री जी की डेब्यू फिल्म थी, लेकिन इसमें हीरोइन के काम के लिए ना बहुत सारे एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया गया था, जिनमें से एक थी पद्मिनी कोल्हापुरी भी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि वो उस फिल्म की शूटिंग कर रही थी जिसका हम गाना सुनेंगे अभी, जमाने को दिखाना है। और क्या गाना है, आर डी बर्मन की कॉम्पोजिशन, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, शैलेंद्र सिंह की आवाज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Mirchi, it's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

1977 की एक फिल्म है, यही है जिंदगी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इसमें मेन लीड में है संजीव कुमार साहब और ये एनफ होना चाहिए फिल्म देखने के लिए। तो ओवरऑल फिल्म इतनी बढ़िया नहीं है, कुछ एक्टर्स हैं उनकी कास्टिंग इतनी ठीक नहीं है, लेकिन संजीव कुमार का काम पैसा वसूल है। उसमें वो एक ऐसे इंसान का रोल प्ले करते हैं जो ऊपर वाले में विश्वास नहीं रखता है, उसको अपनी काबिलियत, इंटेलिजेंस, अपनी मेहनत पे भरोसा है। वो गरीब है और उसको लगता है उसकी लाइफ में अगर पैसा आ गया तो वो मेहनत से और पैसे बढ़ा लेगा और खुश हो जाएगा, पर उसकी लाइफ में पैसे आने से पहले साक्षात भगवान आ जाते हैं, श्री कृष्ण उससे मिलने आते हैं। फिर इनकी लाइफ में कुछ पैसे आते हैं, ये मेहनत करके बहुत रईस हो जाते हैं, लेकिन क्या

वो खुशी मिलती है जो उनको लगता है कि पैसे आने के बाद मिलनी थी। दैट इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। तो कभी एवं टाइम पास के लिए आप ये फिल्म देख सकते हैं, यही है जिंदगी। फिलहाल गाना सुनेंगे उस फिल्म का जिसमें परफॉर्मेंस के लिए संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, आंधी फिल्म। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

आपको पता है सुभाष कई साहब शत्रुघ्न सिन्हा साहब की वाइफ पूनम सिन्हा के राखी ब्रदर हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और 1970 से हैं, तो जब 1976 की फिल्म काली चरण की शूटिंग हो रही थी उस टाइम सुभाष कई एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में थे। वो सिचुएशन ये थी कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब तब उनकी वाइफ जो तब उनकी गर्लफ्रेंड थी उनको भी डेट कर रहे थे पूनम जी को, और रीना रॉय जी को भी डेट कर रहे थे जी। तो ये चीज सुभाष घई के लिए बड़ी डिफिकल्ट हो जाती थी, बिकॉज फिल्म के सेट पे वो रीना रॉय के साथ रहते थे। बताइए बड़ी बड़ी फिल्मों के पीछे क्या क्या कहानियां होती हैं, पता भी नहीं होता। फिलहाल इसी फिल्म का ये गाना सुनेंगे पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं कि आपका काम ही आपकी दुनिया बन गया है, बाहर आपकी कोई दुनिया ही नहीं है? फिर से सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आपके कलीग्स ही आपके दोस्त बन गए हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि वही आपका परिवार है शायद, क्योंकि परिवार वालों से ज्यादा तो अपने कलीग्स से मिलते हैं। एक इंटरव्यू में सुनिए माला सिन्हा जी ने क्या शेयर किया था कि क्यों फिल्म इंडस्ट्री के बाहर वो दोस्त वगैरह नहीं बना पाई।
1: हमको मौका कहाँ मिला कि हम बाहर के लोगों से मिले। जब पिक्चर हिट होती है, एक के बाद पिक्चर आती जाती है, आप काम करते जाते हो तो माहौल वही होता है। हमारा परिवार वही डायरेक्टर, वही प्रोड्यूसर, वही कलीग्स, हमारे जितने साथी वर्कर आर्टिस्ट, वही हमारे परिवार होते हैं। हमने एंजॉय बहुत किया, बहुत आई लाइक। हालांकि मैंने और चीजें बहुत मिस किया, मतलब सैक्रिफाइस त्यागना पड़ा, जैसे बाहरी दुनिया के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, स्कूल के दोस्त, अपने परिवार। भाई मेरे अपने कजिन सिस्टर से भी मिलने का मौका नहीं मिलता था मुझे, वही तो मेरे परिवार।
0: चलिए इसी बात पे माला सिन्हा जी पे पिक्चराइज्ड ये ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी चीज़ विद चारू ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची मिर्ची इट्स हॉट पुरानी चीज़ विद चारू ओनली ऑन

लिरिसिस्ट SH बिहारी साहब के पास बहुत टैलेंट था, लेकिन किस्मत उनके साथ उतनी नहीं थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उन्होंने फिल्मों में गाने लिखना लेट 40s में शुरू किया, मिड 50s में उनके कुछ गाने हिट हुए, फिर मिड 60s में। इस बीच उनको काफी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। उनके करियर में चढ़ाव कम थे, उतार ज्यादा थे। 70s उनका काफी डल रहा। लेट 70s में उन्होंने एक एक्सीडेंट में अपना बेटा खो दिया। 19-20 साल का उनका बेटा रहा होगा तब, और फिर कुछ साल बाद अर्ली 80s में दूसरा बेटा भी एक एक्सीडेंट में नहीं रहा। ये बात उनकी डॉटर ने एक इंटरव्यू में शेयर की थी। 80s में करियर वाइज कुछ चीजें बेटर हुई। बिहारी साहब ने प्यार झुकता नहीं फिल्म भी लिखी और उसके गाने भी। ये फिल्म 1985 में रिलीज हुई, लेकिन 1987 में खुद बिहारी साहब नहीं रहे। हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। सच इज लाइफ। सोचिए ये गाना लिखते हुए जो हम अभी सुनेंगे वो क्या गो थ्रू कर रहे होंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो मिर्ची हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म रामायण की बात करूंगी, क्योंकि इसका ट्रेलर हो चुका है पोस्टपोन। सो नमित मल्होत्रा प्रोडक्शंस की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है दैट सोनी पिक्चर्स हैज कम ऑन बोर्ड फॉर ग्लोबल रिलीज ऑफ द मूवी आउटसाइड इंडिया, एंड इसी की वजह से इसके ट्रेलर को अभी के लिए पोस्टपोन किया गया है। बाकी नितेश तिवारी डायरेक्टोरियल इस फिल्म में, रणबीर कपूर, साई पल्लवी, सनी देओल, यश एंड रवि दुबे पिविटल रोल्स में नजर आएंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट इज सेट टू रिलीज ऑन दिवाली 2026। बाकी की रीड्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। सनी देओल की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म बंटवारा 1947 को CBFC ने ए सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया है। ये पहली बार हुआ है जब सनी देओल की कोई फिल्म अडल्ट्स ओनली रेटिंग के साथ पास की गई है। बाकी द मूवी इज सेट टू रिलीज ऑन द 14th of August, जो 2 घंटे 25 मिनट और 34 सेकंड की होने वाली है, यानी कि 145.34 मिनट्स लॉन्ग। आहान शेट्टी और शर्वरी वाघ का कॉम्बिनेशन, भाई आई एम क्वाइट स्केप्टिकल अबाउट इट, क्योंकि मुझे तो आहान शेट्टी की एक्टिंग कुछ खास पसंद नहीं आई थी इन बॉर्डर 2। ऑल्दो इन दोनों एक्टर्स की अपकमिंग फिल्म, जिसका नाम अभी डिसाइडेड नहीं है, उसको डायरेक्ट कर रहे हैं अली अब्बास जफर, और इस फिल्म को उसका रिलीज डेट मिल चुका है, विच इज 24th of March नेक्स्ट ईयर। इट इज गोइंग टू बी अ रोमांटिक एक्शन ड्रामा, जिसमें इन दोनों एक्टर्स के अलावा बॉबी देओल और ऐश्वरी ठाकरे भी नजर आएंगी। वेल, अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं।

0: 98.3 Mirchi. It's hot.
1: Oh, आँखों ही आँखों में कर बातें गुपचुप गुपचुप गुपचुप कोई खुश खुश खुश खुश खुश ओए ख्वाबों की नदी में खाए गोते गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ ओए बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ ओए आँखों ही आँखों में कर बातें गुपचुप गुपचुप गुपचुप कोई खुश खुश खुश खुश खुश ओए ख्वाबों की नदी में खाए गोते गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ ओए गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़।

बस तेरा चले तो ले ले पूरा दिन हो तैयार तो घंटे न गिन मैं हूँ यही एच सर्विस टेक योर टाइम शॉरी यू डिजर्व इट हाथ मेरा थाम लेट मी मेक यू स्माइल आई लाइक योर स्वैग यू लाइक माय स्टाइल

0: Mirchi. It's hot.
1: Yeah. Yeah. You already know what it is.

तू बता आग लगे जानी जान के जान, तू जान से बढ़कर मेरी। मैं थोड़ा तेरी आंखों पे मर गया, मैं थोड़ा तेरी बातों पे मर गया। तू थोड़ा थोड़ा मूव हुई जो तो सारा मेरा जाम बिखर गया।

0: तो सारा मेरा उप्स।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।